जुग महें धर्मा जन कौ नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की मान जो जो होग रहाऊ।

सुख है स्वामी, शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा, पल एक माहे तराया, पूर रहया सर्व छाई, गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी, सर्व दुख

बिन गुर मूड भये है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहु तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै ना काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। सा, सा

शेष रहै। आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच पौड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोकन

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु पांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

हर जस त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हो मैं रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर

आई। ऐसा इस हर धन का शाहर आप है संत हो, इस हर धन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

मन मुख दज मरन जमपुर बद्धे मारिय है वेला ना लहन गुरुमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहज सुख रहन गुर का शब्द विसारया।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभागी

सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जा गाई एक दान मंगै नानक बेचारा हर दास नदास कराई।

सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए। राम नाम धन संचया।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत कर है गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वस्या कट अंतर से जन शब्द सुहाय नानक तिन

ताज शब्द लिवलाई। आन दिन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा। सब

निस्तरया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जान पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अला

मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की कहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनों

हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वडभागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना बिला।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाउ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोकौ दीजै दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सिया

अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका बड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

पंजवां अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित एक निमुख जपाइए अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाइए कित विधि।

रख रख चरण हर ताल पुरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावे, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया।

उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा।

आए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय।

नानक गुरु गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही दीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द तह।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म,

खिन मह वेश करह नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह बिकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें साकत मानं अभिमान पया।

आई। पूजा करे सब लोक संत हो, मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संत हो, ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई।

तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

होए तुझे पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया।

शांत। प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे।

दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा, मुंद्रा चोली खिंथा, बारह अंतर एक सरे बहो, खट दर्शन एक पंथा। इन विद मन समझाइए पुरखा, बाहुड़ चोट ना खाइए, नानक बोले गुरमुख।

प्यारी। कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया। कवन मुख काल जोहत नित रहै, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहै। कवन जोत जो काल संहारै, बोलै बाणी नानक बिचारै। शब्द भाख

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधारो।

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बिचारे।

नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, ओए पहाड़े चलन अपने नित झूठ।

पौड़ी मनमुख मोगुबार है दूजे भाए बोले दूजे भाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोले अंतर प्रगा

सममोहे गुरपुरै में लाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जय वड अवर ना कोए पौड़ी।

सो तुद बुझई जो तुद पहाणा जंत सो दरगह सिझई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई

साध संगत का आसराय प्रभ सिउ रंग लाए औगण काट मुख उज्जला हर नाम तराए जन्म मरण पहु कटे।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रवसस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल

हर हार हर उतारियो, जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

जिह कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारयो एक निमख नहीं।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टिय गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग

मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सब

गुर शब्द पछाता गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख।

है आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल

सतगुर बाजहु संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रहै दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही, निज घर वासा पाया। काया सोध है शब्द विचार है।

गुण निधान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया। दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

तिसे ही सुख तिसे ही ठकुराई, तिसे है ना आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई।

पाक खरा शराशरयत लेकम्मा वहो त्रिकत तर्क खोज टोला वहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुटेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस गाया।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

सच शाह अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोले पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर लै करण कारण समर्थ है घट घट सब बोले रिजक समाहे सब सह क्या मानस डोले गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोला।

विरहाओ, कर अनुग्रहो आप राखियो, नह उपज पाओ बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नै संसार।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।